नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम

0: की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन,

0: रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा चुनाव में। तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है। देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है। कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएस इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at Business Forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position.

जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिखते हैं रोमेश पत्रो, रुनु पत्रो और लकी गोलाकार असम से। नमस्कार आरजे, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे। फौजी भाइयों को हमारा साथ साथ नमोन। हम भी गीतों का मजा ले रहे हैं। वेल रोमेश पत्रो, रुनु पत्रो और लकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे इस प्यारे से कार्यक्रम में, जहाँ पर हम अपने उन वीर फौजी भाइयों को याद करते हैं। वाह दोस्तों, कितना सुकून भरा गीत था ना वो पहला वाला गीत जो हमने सुना। कभी कभी म्यूजिक बिल्कुल एक दोस्त की तरह ही होता है, राइट? आप सहमत ही होंगे हम मेरे से, बिना कुछ कहें दिल की बात समझ लेता है। और हमारे फौजी भाइयों के लिए जो घर के यादों को दिल में संभाल कर अपने ड्यूटी निभा रहे हैं, अभी ये अगला गीत स्पेशली डेडिकेट करना चाहूँगी आप सभी को, फिल्म काइट से, दिल क्यों ये मेरा।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोहिमा FM ट्रागोपैन 103 MHz पर आप अपना पसंदीदा हिंदी फिल्म सॉन्ग्स फौजी भाई करने। और यहाँ पे हमारे पास फिर से मैसेज आ चुका है, यहाँ पे लिखते हैं हैप्पी फ्राइडे मॉर्निंग RJ, बिग सलाम, थैंक यू फॉर प्लेइंग द सॉन्ग दिल क्यों ये मेरा। लिसनर्स, नमीदी बॉय और नमीदी गर्ल, नमीदी बॉय और नमीदी गर्ल, बहुत दिनों के बाद आपका मैसेज आ रहा है। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड, थैंक यू फॉर राइटिंग इन। और यहाँ पे फिर से दुर्गेश नागिनपुरे, राधे श्याम नागिनपुरे, वंदना भवना, बिंदु, गोलू, कुसुम भाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार दक्षे, सूरज वर्मा, ऋषभ खनक और भवना वर्मा, प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममता भाई वर्मा। वाह दुर्गेश जी, आपका तो बहुत ही बड़ा परिवार है और अच्छा भी लगता है ना, आजकल इतना बड़ा परिवार कहाँ होता है, ऐसे मिलजुल के रहने वाला परिवार, इतना प्यार से रहने वाला परिवार कहाँ होता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी परिवार एक साथ मिलके हमारे प्रोग्राम सुनते हैं और उसका लुफ्त उठाते हैं। तो यस, ये था हमारा कुछ मैसेजेस। और 10 बजे आपको मैं आपके लिए मैं लेकर आऊँगी ट्रैफिक अपडेट, उसके बाद हम हमारे इस कार्यक्रम का सिलसिला जारी रखेंगे। तो अभी के लिए हम सुनते हैं जिंदगी दो पल की, KK की आवाज़ में, फिल्म है काइट।

हमारे दोस बजी हुआ लोगे आकाशवाणी कोहिमा एफएम ट्रगोपेन परा कोहिमा टाउन लगा ट्रैफिक अपडेट इनका अनिदिया से मौन खुला परा लोई किना पीएचक्यू जंक्शन नॉर्थ बाउंड इटा कारने भारी ट्रैफिक असे मतलब इटा कारने बिशी गाड़ी जैम असे कोई किना दिखाई से और साउथ बाउंड हल्का ट्रैफिक असे जुदी आपनार दूसरा रास्ता लोबो कोइले ओल्ड मिनिस्टर्स हिल परा जेल कॉलोनी लगा रास्ता पीएचक्यू जंक्शन परा लोई किना मेजर जंक्शन इटा नॉर्थ बाउंड साइले मॉडरेट ट्रैफिक दिखाई से आको साउथ बाउंड हल्का ट्रैफिक असे जुदी दूसरा रास्ता लोले परा मेडिकल टी मॉडल पर आई डी नोले बा लेडी स्माइल्स रोड टीसीपी परा लोई किना राजू पॉइंट इटा नॉर्थ और साउथ बाउंड दुईटा टेबी मॉडरेट ट्रैफिक दिखाई से तो दूसरा रास्ता हुए बॉक्स कटिंग एन एच ए के परा सेंसेस पॉइंट नोले बा फुलबारी परा खचेजे ग्राउंड परा राजू पॉइंट इतिया राजू पॉइंट पर सेंसस पॉइंट लगा रास्ता साइडी असे नॉर्थ बाउंडे और साउथ बाउंड भी मॉडरेट ट्रैफिक असे जुदी दूसरा रास्ता लुले सेंसस पॉइंट पर लुकिना एनएचए के रास्ता हाई स्कूल जंक्शन पर लुकिना सेंसस पॉइंट इतिया नॉर्थ बाउंडे मॉडरेट ट्रैफिक असे और साउथ बाउंडे हल्का ट्रैफिक असे दूसरा रास्ता हुईले बिली ग्राहम रोड पर डीबीएस नहले बा हाई स्कूल जंक्शन पर टी मॉडल रोड एनएचए के जंक्शन पर लुकिना सेंसस पॉइंट इतिया नॉर्थ और साउथ दुईटा टेबी हल्का ट्रैफिक असे एटु थाकिसे समय दस बजी लगा कोहिमा टाउन लगा ट्रैफिक अपडेट होने थाकिबि एफएम ट्रगमेन 103 मेगाहर्ट्ज समय दस बजी आधा हुआ लगे लुकिना आहिबो आकुबि अपना खान लगा ट्रैफिक अपडेट।

Well, my dear listeners, Sumit Kuria se apunar khan program te juri kena khub bhal lagi ase koi kena biswas kuria se. Aur yes, Durgesh Naginpure hamare saath ho aur ek pyara sa sher na ho, ye kabhi ho hi nahi sakta. To hamare Durgesh ji ne ek pyara sa shayari bhej diya hai hum sabhi ke liye. To dhyan se irshad sun lete hain, right? Khuda kare hum manzil ko kayam aapki. खुदा करे हर मंजिल को कायम आपकी, हर सूरत हो गुलाम आपकी. हम तो यही दुआ करते हैं, सुनहरी हो सुबह और रोशन हो शाम आपकी. वेरी ब्यूटिफुल मॉर्निंग दुर्गेश नागिनपुरे बाबू दिव्यांश और वंदना नागिनपुरे. वाह वाह वाह, दुर्गेश नागिनपुरे जी कहाँ से आते हैं आपको इतना प्यारा शायरी? कहाँ से लिखते हैं? अपने मन से बनाते हैं या कहीं किताबों में पढ़ते हैं? क्या करते हैं आप? आपका जो शायरी का जादू है ना, वो हमेशा हमेशा काम कर जाता है हमारे इस स्टूडियो पर. एक बड़ा सा मुस्कान लेकर आ ही जाता है आपका ये प्यारा सा शायरी. और यहाँ पर लिखते हैं, हेलो आरजेसीज, गुड मॉर्निंग के सिंगर. दुनिया जैसे ना होले भी ताई लगा गाना दुनिता स्टील असे लाइफ फ्रॉम बाली पत्थर बीरेन हंसे. वेल बीरेन हंसे, ताई खान ना थकी जाले भी के लगा आवाज़ तो हमेशा हमेशा मई खान लगते थक यू निचना अपना खान भी के याद कर दिया ना यू बार बेसि भल एने का जुड़ी के ना थकबि. एंड येस, एफ एम ट्रगवान 103 मेगाहर्ट्ज पर आप साथ निभा रही हैं और आप साथ निभा रहे हैं मेरा आरजे वेरोनिका का. दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी में ऐसा होता है ना, ऐसा भी होते हैं जो कभी हमें हंसा देता है, कभी इमोशनल कर देते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा दिल के करीब रह जाते हैं. कभी ऐसा महसूस हुआ है, कभी किसी के साथ आप रोए हो, कभी हंसे हो, लेकिन आज अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो वो चला ही गया है, उसका हाथ नहीं रहा है आपके साथ. तो इसी एक भावना के साथ हम सुनते हैं ये तेरा घर ये मेरा घर फिल्म से हंसाते हो और रुलाते हो, अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ में.

वेल माय डियर दोस्तों, कितिया टाइम जाय जाय से ना जाने हो जाय से, वक्त इतना जल्दी चला गया और होने को आया है 10:20। वेल एट 10:20 आप सुनेंगे वर्ल्ड न्यूज, उसके बाद 10:30 टू 11 आपका होगा वेस्टर्न म्यूजिक आरजेस चॉइस, और मैं वापस आऊंगी 11:30 से 1 बजे तक आपके साथ देने के लिए एसएमएस रिक्वेस्ट के साथ। तो तैयार रहिएगा, आपको कौन सा गीत सुनना है वो भी याद रखिएगा और बिल्कुल भूलिएगा मत लिखकर भेजने के। और यहाँ पे मोहब्बत शायरी लिखकर भेज रहे हैं एक बार फिर से, मेरे चाहते असर कर ही गई, देख आज तुझे हमसे मोहब्बत हो ही गई। बादलों से ज्यादा हमारी आंखें बरसाती हैं, बारिश से ज्यादा तेरी मोहब्बत बरसाती है। लिसनर्स दुर्गेश नागेनपुरे FM ड्रैगन का दीवाना। वेल दुर्गेश जी, आपका दीवानापन तो हमें समझ में ही आता है, लेकिन ये बहुत ही रोमांटिक शायरिया, ये बहुत ही अच्छे अच्छे शायरिया आप कहाँ से लाते हो ये हमें जानना है। आपका ये जो रास है ना, इतना अच्छा अच्छा शायरी लिखने वाले, वो रास हमें जानना है। और आपके पसंदीदा गाना लगातार FM ट्रागोबन 103 MHz पर दिन भर दुर्गेश नागिनपुरी जी फिर से लिख रहे हैं। वेल, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो ताज़ा मछली खाने की सुकून शौकीन है, हमें तो ताज़ा मछली खाने की शौकीन है। वेल दुर्गेश जी, हमें भी तो ताज़ा मछली खाने का शौकीन है, लेकिन क्या करें, पकड़ नहीं पाते हैं, यहाँ पे कोई बड़ा सा नदी भी नहीं है। एनीवेज, यस, गुड मॉर्निंग माय डियर आरजीवी, लाइफ इज़ अ बुक, एवरी डे इज़ अ न्यू पेज, एवरी मंथ इज़ अ न्यू चैप्टर एंड एवरी ईयर

is a new series. Live your life with gratitude and join your awesome playlist. Chuba ke jamir ong mam gok tung. Well, Chuba bishi din prabuni message patana ay kwe kina babi thai she. I hope you are doing good, my dear friend. And yes, isi ke saat, I think I am gonna be taking your leave because we have another 6 minutes on the clock before I leave. But yes, dosto, before me, अलविदा कहती हूँ, कुछ गीत सिर्फ सुनने नहीं जाते, ओके? महसूस भी किया जाता है. और जब कोई अपना घर छोड़कर, अपने लोग, अपने गलियाँ, अपने सब कुछ छोड़कर नए सफ़र पर निकल जाते हैं, तो दिल में बहुत सी यादें साथ लेकर चलते हैं. हमारे जो फौजी भाई हैं, उनका भी लाइफ कुछ ऐसा ही होता है. ड्यूटी जाते हैं, लेकिन हमेशा अपने परिवार का जो तस्वीर है, परिवार का जो यादें हैं, जो हमेशा वो लेके जाते हैं. तो एक आखिरी गीत उन सभी के नाम, और ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगी अपने फौजी भाई के लिए. ये है दिल फिल्म से हमने घर छोड़ा है, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में. तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM ट्रगोपन 103 MHz.

यस माय डियर लिसनर्स, अगला मैसेज आया है जुमोन असम से। बोलते हैं प्लीज जन्नत मूवी लगा हाँ तू है गाना तू बुझाई दीबी को। ऐसे जुमोन अपना लगा गाना तो ऑलरेडी प्ले लिस्ट जैसे इटिया में खन जाए कि ना होने वो जन्नत फिल्म लगा गीत हाँ तू है के लगा आवाज से। क्विक रिमाइंडर 12 बजे हुआ लो के अपना खाना का ट्रैफिक अपडेट लो कि ना हमें आपको आई बो।

Good morning, dear Veronica, ma'am. Moron para kismat film para dil teri divangi me. Ganatu kuridipi aru durgesh naginpure. Rupali munda mainu rabba niharika tanti puja urang. Ramesh patro runu patro jugendro rongpi chubake jamir. Amal basumaturi, bimal basumaturi, anjali, shikari rongfar. Fagu Urang, Kulomoni Bora, Sabina Begum, Chandra Timung, Henrika Timung P, ke dedicate kuridibi. Thank you, regular listener. Paikon Munda District, Charaido, Sonari Asampara. To amikanaga satikan sob, apunar kan judi itya radio huniasikule itu ganatu kismat film pra dil teri divan gime. Paikon Munda hi apunar kan sob ke dedicate kuridiasi amikan jai kena. Itu film tu, laga gitu honilwa hobo aru itya. Aku ektaise katipatang film laga gana bajai divina pyar divana hota hai. Singer Kishore Kumar Atoli from Lazami. Well Atoli ushkim thi vanye. Aur ji haan dosto humare paas bohot bohot sare vakt hai. To rush mat kijiye. Main ek ek karke bilkul aap sabhi ka gana bajane ki koshish karungi. Lekin dosto agar aapke kuch requested gaane प्ले नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए मैं थोड़ी माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि इस वक्त हमारे लाइब्रेरी में कुछ गाने अवेलेबल नहीं हैं लेकिन आपके मैसेजेस हम तक ज़रूर पहुँच रहे हैं और वी ट्रूली लव हियरिंग फ्रॉम यू लेट्स गो अहेड लिसन टू किस्मत फिल्म के गीत और कटी पतंग के गीत

जी हाँ दोस्तों, आप जुड़े हैं आकाशवाणी को हिमा एफएम ट्रकबन और यहाँ आपका हिंदी फिल्मी गीत एसएमएस रिक्वेस्ट प्रोग्राम चल रहा है आरजे वेरोनिका के साथ। और यहाँ पे हमारे पास करीबन आधा घंटा ही बचा है इस प्रोग्राम के समाप्ति के लिए, लेकिन हमारे कुछ खास मैसेजेस में जरूर लेकर आपके लिए आपका मन पसंदीदा गाना बजाते रहूंगी। यहाँ पे सुनीता बसुमत्री बोकाजन से लिखते हैं, सूर्या वंशम का पीपल का पटवा गाना बजा दीजिए। एंड यस, वी आल्सो हैव दमाशा रोसलिन फ्रॉम कोहिमा, कोय से अगर तुम साथ हो, तमाशा फिल्म लगा गीत बजाय डिबी कोई के ना। तो माय डियर लिसनर्स, সময় বারো বাজি আধা হওয়ালে আপনার খান লগতে মই লই কিনা আহিব নিউজ হেডলাইন্স আর আমি খান লগা এইটু এস এম এছ রিকুয়েস্ট প্রোগ্রাম তো জারি রাখব। এটার কারণে আমি খান শুনব সূর্যা বংশম পিপল কি পটওয়া ফিল্ম লগা গীত সোনু নিগম আর জসপিন্দর নেরুলা লগা বাস্তে।

दोस्तों प्रोग्राम में अगला गीत सुनेंगे क्या कहना, फिल्म का गीत क्या कहना, कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाज में। वेल, इसको इसकी फरमाइश लेकर आया है नमेदी बॉय और नमेदी गर्ल।

इस साथ एफएम ट्रगबन 103 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी कोहिमा का फर्स्ट रंस मिशन यही समाप्त होता है। मैं हूं आज वेरोनिका, आप सबका दिल से शुक्रिया फॉर योर लवली कंपनी एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग रिक्वेस्ट। अब थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे एफएम रेनबो रिले दिल्ली के साथ और फिर मुलाकात होगी आज दोपहर 3 बजे सेकेंड ट्रांसमिशन में। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल डे अहेड, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, नमस्कार।

0: הקלטה. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबूधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो

हम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति दोलाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: তোৰ লৰাটোক এতিয়া বহুত সুস্থ দেখা গৈছে।
1: হয়, সঠিক চিকিৎসাই সকলো সলনি কৰি দিলে।
0: পিছে এনে যত্ন ক'ত পালি?
1: গুৱাহাটী ভেটাপাৰাৰ হোমিঅ'পেথিক আঞ্চলিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত।
0: অঁ, তাত পিছে শিশুৰ বাবেহে সুবিধা আছে নেকি?
1: নহয় অ', শিশুৰ স্বাস্থ্য শিবিৰ, পুষ্টি সম্পৰ্কীয় সজাগতা আৰু সকলো বয়সৰ লোকৰ বাবে বিশেষ স্বাস্থ্য সেৱা উপলব্ধ।
0: অঁ, সঁচাকৈ বৰ ভাল কথা,
1: কাৰণ সকলোৰে বাবে সুস্থ স্বাস্থ্যৱান ভৱিষ্যত অতি প্ৰয়োজন।
2: হোমিঅ'পেথিক আঞ্চলিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান, ভেটাপাৰা, গুৱাহাটী।
3: आज ही अपने स्वास्थ्य के लिए उठाए सही कदम। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी RRIH में गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथिक परामर्श, रोगी केंद्रित देखभाल तथा कुछ विशेष स्वास्थ्य स्थितियों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा विशेष परामर्श सेवाएं उपलब्ध है। चयनित मरीज प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क दवाई एवं प्रयोगशाला जाँच सेवाएं। आइए और एक विश्वसनीय सरकारी संस्थान में किफायती और सहयोगात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का अनुभव करें।
2: RRIH, भेटापाड़ा, गुवाहाटी।
3: यह संदेश जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी गुवाहाटीर महाबाहु, एतिया हुनक जाह्नवी बरुवार कंठर दुटी लोकगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे

0: भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
2: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
3: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
2: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमरीकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का

0: फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन्स हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Frequent headaches, allergies, joint pain, recurrent cold? Looking for a natural way to restore your health? Discover the benefits of homeopathy at Regional Research Institute for Homeopathy, Guwahati. With personalized treatment, gentle medicines, and a holistic approach, we care for acute and chronic conditions for all age groups. For affordable healthcare solutions without side effects, visit RRIH Bhetapara, Guwahati. Looking for gentle, holistic healthcare for you and your family? Visit Regional Research Institute for Homeopathy, Guwahati. From chronic ailments to seasonal illness, child health to lifestyle disorders, experience personalized care that treats the root cause, not just the symptoms. Consult experienced homeopathic physicians in a caring and professional environment. Your trusted homeopathic institute, RRIH Bhetapara, Guwahati.
6: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু এতিয়া নিবেদন কৰিছো পাশ্চাত্য সংগীতৰ অনুষ্ঠান

0: हेलो
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, बोलिए, आपका शुभ नाम।
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम भाया तहसील रहती, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ।
0: जी रमेश जी, बोले, कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: ये है फकीरा फिल्म।
0: फकीरा?
1: हाँ
0: फकीरा में इतना शोर नहीं है।
1: नहीं है,
0: बहुत बहुत खेत है, ये फकीरा नहीं है मेरे पास। अगर
1: दो
0: आपको,
1: रास्ते,
0: हाँ,
1: दो रास्ते,
0: वो भी नहीं है।
1: अनीता,
0: अनीता ये पुराना गीत है ना?
1: नहीं है,
0: पुराना का है,
1: 1967
0: का है ना?
1: जी।
0: ओके, अनीता है। बोले, कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: कैसे घर जाऊं सर, वो कैसे करूं मैं प्रेम, कैसे करूं मैं प्रेम की बात, ना बाबा ना पिछवाड़े बुढ़ा खास्ता,
0: पिछवाड़े बुढ़ा कांस्ता,
1: कैसे करूं मैं प्रेम की बात।
0: पिछवाड़ी
1: नहीं, स्टार्टिंग कैसे, कैसे करूं मैं प्रेम की बात,
0: वो नहीं है। गोरे गोरे चांद से मुख पे ये है, पिछवाड़े बुढ़ा खांसता, करीब आ तुम बिन जीवन।
1: हाँ, तो जब पिछवाड़ा बुढ़ा खांसता, यही तो,
0: वही तो बोल रहा है ना, मैं भी।
1: अगर
0: अगर आप लोग सही गीत का बोल नहीं बोलेगा तो यहाँ पे हम लोग तकलीफ हो जाता है। सही वाला बोल एक बार से बोल दीजिए, ठीक है?
1: हाँ जी,
0: ओके, ठीक है। किसी को डेडिकेट करना है आपको?
1: जी, भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा है, और आशुतोष जी है, संगीता जी है, पूनम जी है कानपुर से, पूर्णिमा जी है, अविनाश जी है, राकेश जी है शिमला से, बिमल जी है, अमल जी, अमल भस्मकारी है, गोल्डी जी है, पूनम जी है, अमर सिंह जी है, और भाई को मुंडा।
0: ओके, ठीक है, इतना नाम ले लिया है, ठीक है। आप
1: और धर्मवीर

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्कार
0: नमस्कार, बोलिए आपका शुभ नाम।
1: जी मैम। हम धेमाजी असम जुलाई मेखाकिसापुरी से बिमोल बसुमतारी बोल रहा हूँ मैम।
0: के बिमोल कवि की गाना होनी बोले मन आसे जी।
1: जी मैम, मो पिज़ा फिल्म और गाने होने

0: हेलो
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते, बोलिए आपका शुभ नाम।
1: जी। प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: उज्जैन से, इतना दूर से।
1: जी बिल्कुल, महाकालेश्वर बाबा की नगरी में आपका स्वागत है।
0: जी बोलिए, आपको भी स्वागत है। प्रेम जी, आज कौन
1: जी
0: सा गीत सुनना है आपको?
1: जी मैं बताऊं, फिल्म का नाम है जी, फिल्म का नाम शपथ।
0: शपथ।
1: जी हाँ,
0: शपथ अगर ये नहीं है तो
1: ये नहीं है तो मैं एक और बताऊं आपको, फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।
0: ठीक है, एक दूजे के लिए मेरे पास है। कौन सा वाला गीत सुनना है आपको?
1: जी इसका कोई सा भी गीत सुनवा दीजिएगा आप, एक दूजे के लिए फिल्म का।
0: आपका पसंदीदा होने से बहुत अच्छी होगा।
1: इसमें गाने बताइए आप, कौन कौन से मुझे याद नहीं
0: तेरे
1: है।
0: मेरे बीच में
1: हाँ
0: हम,
1: जी, यही वाला यही वाला यही वाला।
0: ओके ठीक है। और
1: जी
0: किसी
1: जी
0: को डेडिकेट करने के लिए मन में कोई नाम है?
1: जी
0: आप ले
1: बिल्कुल
0: लीजिए।
1: बताऊंगा मैं, बिल्कुल। हमारे दोस्त है भगवान सिंह परमार, लोकेंद्र वर्मा, तुकाराम जाधव, गौतम राय बोले, केसरी सिंह राजपूत, सहारू नूर अंसारी, आशुतोष अविनाश, संगीता जी, राम बाबू शर्मा, और कानपुर से है पूनम जी, सहारू नूर अंसारी, और हमारा ग्रुप बना हुआ है हेलो फरमाइश रेडियो एकता ग्रुप, उसके सभी श्रोता।
0: ओके
1: और
0: ठीक है। और
1: जी
0: है,
1: आपके लिए भी डेडिकेट रहेगा ये गाना।
0: थैंक
1: और
0: यू।
1: शिलोंग से हैं, शिलोंग से शैली जी, आकाशवाणी लखनऊ के दीप्ति जी, और गंगटोक से पूनम जी।
0: ओके, इतना नाम लिया है मैं तो याद भी नहीं कर पाऊंगा, फिर भी आप सभी लोग सुन रहा होऊंगा।
1: जी बिल्कुल, आपको बताऊं ना, मैं मोबाइल ऐप से आपके कार्यक्रम सुनता हूँ ना, तो
0: हाँ
1: हमारा ऐसा सभी दोस्त लोग सुनते हैं ना, तो एक दूसरे के नाम याद रह जाते हैं हम लोगों को।
0: ठीक है, तब तो आप सभी लोग सुने और एन्जॉय कीजिए, और कॉल करने के लिए शुक्रिया।
1: जी थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
0: बहुत बहुत अच्छी लगा, मैं भी। ओके
1: जी
0: थैंक
1: ओके
0: यू,
1: बाय,
0: बाय बाय।
1: ओके बाय बाय।
0: होने ढगा सब मिलना प्रोग्राम टे बार दूसरा गीत दिए से लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम लगावा स्टे फ्लेम एक दूजी के लिए और टू गेट टू उज्जैन प्र प्रेम प्र পচন্দ কৰি কিনা অনুৰোধ কৰিছে আৰু তাৰ পৰা তাৰ লগা বহুত বহুত সাথীবিলাক লগা নাম লৈ কিনা ডেডিকেট কৰিছে। তো আমি খান সব এনজয় কৰা হ'ব এক দুজি কে লিয়ে ফিল্মত লতা মংগেশকৰ আৰু এছ পি বালাসুব্ৰমণিয়াম লগা আৱাজতে।

0: हेलो
1: जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, बोलिए, आपका आपका शुभ नाम?
1: मैम, मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव कुकड़ी से गोल्डी बात कर रहा हूँ। आपका नेम?
0: गोल्डी जी, बहुत दिनों के बाद आपका आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा।
1: जी मैम, कॉल तो करते रहते हैं, मगर क्या बोलते हैं, आपके साथ बड़े दिनों के
0: जी
1: ना?
0: जी वही तो। बोले, कैसे हैं?
1: जी मैम, बहुत अच्छे हैं आपके गाँव से।
0: ठीक है, तब तो बोले, कौन सा गीत सुनना है आज?

0: मैम मूवी का नाम है मन की आंखें और गाने के बोल है चना दिया आजा रसिया।
1: कौन सा फिल्म?
0: मन की आंखें।
1: मन की आंखें। अगर ये नहीं है तो कुछ आपका मन में है?
0: मैम ये नहीं होगा तो वो फिर दूसरी है ना, उस मूवी का नाम है पत्थर के सनम, तो गाना सुना देना।
1: कौन सा
0: पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा।
1: नहीं नहीं, फिल्म का नाम बता दीजिए।
0: मैम फिल्म का नाम यही है
1: पत्थर का नाम,
0: पत्थर के सनम
1: में कौन सा गीत?
0: पत्थर के सनम तुझे हमसे हमने मोहब्बत का खुदा माना बड़ी दूर हुई।
1: ये टाइटल सॉन्ग मोहम्मद रफी का आवाज में।
0: तो मैम मैं अपने दोस्तों को याद कर सकता हूँ?
1: ठीक है बोले।
0: उसका नाथ शर्मा, पंचीराम शर्मा, रिंकू देवी और राकेश कुमार, पूरन वर्मा जी है, धर्मवीर जी है और भगवान सिंह परमार जी है। ये मेरे दोस्त है सभी और रमेश प्रजापति जी भी है।
1: ओके ठीक है, इतना ही लूंगी
0: जी बिल्कुल।
1: ओके ठीक है गोल्दी जी, इतनी दिनों के बाद आपने कॉल किया है, बहुत बहुत खुश हूँ। आपका गीत सुनिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग। শুনি থাকা সব বিলাক প্রোগ্রামটি এবার দুসরা গীত আক শুনব মোহাম্মদ রাফি লগা ভাস্তে। ফিল্ম আছে পাথর কে সনম ফিল্মত, আর এই গীত পছন্দ করেছে হিমাচল প্রদেশ প্রা গোল্ডি, আর তার লগা কিছু সাথীবিলাকে ডেডিকেট করে কিনা আছে। তো শুনব পাথর কে সনম ফিল্ম কি গীত গাইছে মোহাম্মদ রাফি।

0: हेलो,
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। बोलिए, आपका शुभ नाम।
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंतमहल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: जी, बहुत दिनों के बाद आपका आवाज़ सुन के बहुत अच्छी लगा। कैसे है हालचाल?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ।
0: मैं भी ठीक हूँ। बोलिए, कौन सा गीत सुनना है आज?
1: जी मैडम, फिल्म का नाम है कभी हाँ कभी ना।
0: कभी कभी हाँ कभी ना।
1: यस,
0: ओके, कभी हाँ कभी ना में कौन सा वाला गीत सुनना है आपको?
1: इसमें एक गाना है, आना मेरा प्यार गुना को तुम झूठा समझो जाना, ये गाना है इसमें।
0: है बहुत बहुत अच्छी गीत चुनना है आपने। और किसी को डेडिकेट करना है आपको?
1: जी मैडम, डेडिकेट भी करूंगा। मैडम आप वहाँ का मौसम कैसा हो रहा है? मैडम हमारे यहाँ तो गर्मी पड़ने लगी, आपके उधर कैसा हो रहा है मौसम?
0: यहाँ तो ठंडी हवा चल रहा है, बारिश हो रहा है, मौसम अच्छा भी हो नहीं अच्छा भी
1: हमारे
0: हो
1: यहाँ
0: बीच
1: तो मैडम
0: में है।
1: बहुत बहुत गर्मी पड़ रही है, और अभी कल परसों यहाँ अंदर चला था मैडम बहुत ज्यादा, तो बहुत ही गर्मी पड़ती है यहाँ, क्योंकि यहाँ गर्मी का तापमान इतना बहुत ज्यादा होता है, धूप इतनी पड़ती है बहुत ज्यादा।
0: अभी
1: आपके उधर
0: कितना में
1: पड़ती है
0: है?
1: मैडम? अभी यहाँ 45 के आसपास हो रहा है मैडम यहाँ।
0: 45? बहुत बहुत ज्यादा है, तब तो बहुत गर्मी होगा।
1: जी आपके उधर कितना टेम्परेचर अभी?
0: अभी इतना तो नहीं है हम लोग का, क्योंकि बारिश हो रहा है, ठंडा है। अभी तक ठंडी का कपड़ा नहीं छोड़ा है हम लोग।
1: जी फिर भी कितना होगा जैसे आपको पता तो होगा?
0: कितना होगा मैं तो ख्याल में नहीं है, बीस का बीच में होगा।
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम, तो बहुत कम है आपके तो यहाँ, हमारे से बहुत कम है।
0: हाँ बहुत ज्यादा। तो बोलिए, किसी को डेडिकेट करना है आपको? नाम ले सकता है,
1: जी सबसे पहले तो आप है मैडम,
0: ठीक है, थैंक यू।
1: और दूसरा आकाशवाणी कोयमा के जो एक कार्यक्रम हमारे लिए सजा के लेके आए आते हैं, और इतने कार्यक्रम को हमारे लिए पेश करके श्रोताओं के पास पहुंचाते हैं, उनके लिए भी।
0: ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
1: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति है, गोल्डी भाई है, अमर साहू है, और कोयमा के कॉलर बिमल है, और अमर जी है, और जितने कोयमा के कोशताओं के लिए खासकर मैं सुनाना
0: वो
1: चाहता हूँ मैडम
0: आसाम
1: ये
0: से
1: गाना।
0: है,
1: जी
0: बिमल
1: जी हाँ
0: बसुमतारी, वो लोग सब आसाम का है।
1: हाँ जी मैडम, तो उधर के कॉलर, क्योंकि मेरे को इतना वो थोड़ी सी आपके अलग लैंग्वेज होती है तो समझ नहीं आती, तो इसलिए उन श्रोताओं के लिए मैं सुनाना चाहता हूँ, तो कोयमा के लिए,
0: ओके
1: और कोयमा के खासकर प्रोग्राम अभी लाइव जुड़े हैं उन श्रोताओं के लिए।
0: ओके, ठीक है। पुरन वर्मा, आपने कॉल किया, बहुत बहुत खुश हूँ। आपका गीत सुनिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग,
1: थैंक यू मैडम, धन्यवाद।
0: वेलकम। उन्हीं टका सब बिला खुनी वो कभी हाँ कभी ना। फिल्म के गेट गए से कुमार सानू और अलका याग्निक आर रेडी टू गेट टू ऑल द वे फ्रॉम राजस्थान। पुरान वर्मा प्र पसंद कुरी गिना अनुरोध कुरी से तो तार प्र तार लगा एफ एम ला किसुमन साथी बिला करो आसाम ते जिमान जोन भी तारखान के डेडिकेट कुरी दी गिना गीत मांग कुरी से तारखान सब आरो जिमान जोन भी हुनी गिना से सब करने डेडिकेट कुरी गिना से तो हुनी थका सब बिला सब प्र हुनी गिना एन्जॉय कुरा होबो कभी हा कभी ना फिल्मोत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है।

0: वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
1: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को

0: आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
1: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
2: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिदाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिदाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर 94 रुपए और 48 पैसे के स्तर पर बंद।

वह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।